सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज। अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

上来。嗯，慢点。अरे अपनी फेरी आवे रे मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी मुंह चुनकिरी बिचारा अभी सब मले बात पर ही बसी रोले मो बजे कुस्तो खत्म करो ने दिल जार जगर माते रागो कुस्तो मले ये ला ओ पुष्टिया मेरी बुढ़ी बुढ़ी बंदर इस चले ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू My sato putlo flying after see you. Angrezi bujhdina. Tale dekhre sato putlo urja banega.

तुम्हें म बाहर लड़े हो ढोका खोलना भन्दैछु आप ढोका छोड़े दिन्छु सन्जे दुख दिन्छु यार म त बाहर लड़ी दिन्छु।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

नमस्कार रेडियो स्वाइलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म पत्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 मे 22 तारीख ज्येष्ठ 8 गते शुक्रबार खष्टी तिथि अब स्तुति गरौं

मिका पना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर दा नारी ले प्रगति पथ को ये।

नगरेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।

यति बात सुनि भन्दा चिन्ती सुरसा मेरा मुखैमा पसि निस्कि जाऊ नै भने म बलले पक्रेर दरा घसी भोकी मैलिँदा उरिन त कपाल खोरे कि केसा बुसाई लट्टा मात्र परे कि खाली भूमिमा रुँदै बसे कि तसाई राम चित्त दिए राम रु बढिया मानेर सीता तहाँ झन्ने नि मतलब